0: और अब देखते हैं सेवन सबसे पहले किसका मैसेज आया है। पहले तो प्यार अली भाटिया ने कहा है कि देखो, रिस्पेक्ट योर एफर्ट्स, रिस्पेक्ट योर सेल्फ। क्यों? सेल्फ रिस्पेक्ट लीड्स टू सेल्फ डिसिप्लिन। ओके, ठीक है, बहुत अच्छे।
1: प्रवीण जी, मेरा छोटा सा ये संसार है, ये गाना फिल्म भाई भाई का है, जिसको लता मंगेशकर ने गाया है और जिसको राजेंद्र कृष्ण ने लिखा है और जिसकी जो धुन मदन मोहन ने बनाई है। ये ब्यूटीफुल गाना सुनाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: और अब देखते हैं कि अगला मैसेज किसका है, और आप हैं शबीर अहमद। शबीर अहमद फ्रॉम लंदन, सलाम अलैकुम सबको। वालेकुम। और आपके बाद कौन आई है? शमीम फ्रॉम साउथ अफ्रीका। कहाँ लंदन और कहाँ साउथ अफ्रीका का शहर, मुझे लगता है आप जोहान्सबर्ग में है। ओके, अ मिस्टीरियस आइलैंड सडनली अपीयर्ड आउट ऑफ नोवेयर इन कैनेडा, ओनली टू वैनिश विदाउट अ ट्रेस जस्ट अ फ्यू वीक्स लेटर, लीविंग साइंटिस्ट बेफल्ड। कहते हैं अचानक एक जजीरा निकल आया समंदर से, लोगों ने देखा ये कहाँ से आ गया है, वो देख रहे थे कि वो गायब भी हो गया। कहते हैं कि साइंसदान पता नहीं वो क्या, पता नहीं चल रहा कि हुआ क्या है। चिराग पटेल कराटीना से चेयर कर रहे हैं, और रूपल गुड मॉर्निंग और हैप्पी थर्सडे, बहुत खूब। Somebody is tuned in from Australia. क्या बात है? कहते हैं कि गुड मॉर्निंग प्रवीण जी, माई नेम इज सोनल फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, आई एम रूपल्स सिस्टर। देखा ना, मैं कहती थी रूपल बड़ी अच्छी लिसनर है, एडवर्टाइज भी करती हैं प्रोग्राम को। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, आई वुड लव टू लिसन टू दैट। Enjoying your program, tuned in from Australia. क्या बात है सोनल, आई होप जब रूपल वापस आ जाएंगी नैरोबी तो आप रेडियो को बंद नहीं कर देंगी। ओके, अब देखते हैं कि कौन है हमारे साथ। अमीर अली राणा हमेशा अपना नाम क्लियरली लिखते हैं ताकि मुझे ऊपर स्क्रॉल ना करना पड़े आपके नाम के लिए। और कहते हैं कि मेरी मोहब्बत को तुम क्या आजमाओगे, जान से ज़्यादा क्या मांग पाओगे, मेरी मोहब्बत सितारों जैसी है, क्यों तुम उस सितारों को गिन पाओगे, क्या तुम उन सितारों को गिन पाओगे। नहीं, कोई सितारों को गिन नहीं पाया। अमीर अली राणा, गुड, बहुत खूब। और आपके साथ ही भरत गंगाराम भी आ गए हैं लंदन से, और कहते हैं कि सभी का स्वागत मैं करता हूं बेमिसाल अंदाज में, थैंक यू सो मच। चंद्रिका वासंत गोसाई कहती है मैं एंजॉय कर रही हूं, ट्यून्ड इन, और उम्मीद है तमाम गाने ब्यूटीफुल होंगे। रंजन विनोद कहते गुड स्टार्ट विद एन ओल्ड सॉन्ग, ये फिल्म भाई भाई का था, बहुत अच्छे रंजन विनोद, थैंक यू। और आपने क्या, आप कौन हैं जिन्होंने कहा है सुबीना जहीन, ओके, कहा क्या है कि ये डाउनलोड कर दो, वो डाउनलोड करने वाली बातें छोड़ें, आप लिखें अपने हाथ से जो लिखना है। हैप्पी थर्सडे टू ऑल द लिसनर्स फ्रॉम सोनल मोदा, एक सोनल ऑस्ट्रेलिया में है, एक सोनल मुंबासा में है।

समन, आपके लिए एक छोटी सी इतला भी है कि महफिल अनप्लग्ड ये ईस्ट एफएम की पेशकश है, एक इवेंट है जिसमें आप आ सकते हैं, तशरीफ लेकर आएं। 4 बजे शुरू हो जाता है इन इवेंट महफिल अनप्लग, बढ़िया संगीत, जैसे गाने आप कितनी देर फरमाइश करते रहते हैं, आपकी फरमाइश पूरी नहीं होती, तो आप यहाँ आएं, आपको सारा म्यूज़िक जो हम प्ले करते हैं हर एक प्रोग्राम में वो सुनने को मिलेगा। गोन जिमखाना जगह है 26 सितंबर, और 4 बजे शुरू होते, फिर आपकी मर्जी रात कितने बजे तक महफिल सजी रहे, यादगार इवेंट होगा। दोपहर से रात तक रिदम एंड रागा लाइव बैंड होगा, तो समय बड़ी अच्छी एनर्जी होगी। अब मुझे कहा गया है कि बेमिसाल अंदाज में कम अज कम 100 लिसनर्स बेमिसाल अंदाज के होने चाहिए महफिल अनप्लग्ड में, तो मैंने कहा ओके ठीक है, शर्त है। तो समय शुरू कर दें आप, अर्ली बर्ड टिकट्स करेंगे तो 1,000 शिलिंग, और काफ़ी कुछ होगा वहाँ, आपकी एंटरटेनमेंट का सामान होगा और संगीत का सामान होगा, खाने पीने का, तो आप आएँ, 1,000 शिलिंग है सिर्फ, 2,000 तो गेट पर है ना, तो अभी से बुक कर लें ticketa2.com पर, ticketa2 पर, ताकि 26 सितंबर आपका यादगार इवेंट बने। तो सामिन, अब चलते हैं ऑस्ट्रेलिया वालों की फरमाइश पूरी कर दें।

0: Thank you so much indeed. Rane Janair, bahut shukriya aapka. Arfa from Mungata Rungai kehte hain ki wo gana jo Sonal ne kiya tha mera bhi favorite hai. Sonal ne farmaish ki thi. Aur Lakhbir, ye print bahut chhota hai, aapko diya likh kar bhejein. Aur agla jo message hai kehte hain, so I'm requesting this song for my father. I miss him lots. Allah keep him in best place in the I am only daughter Rubia. Dharmendra ka koi bhi gana aapne kaha hai ki aap chahte hain ki apne baap ki yaad mein. Okay, dekhte hain ki waqt milta hai to zarur. Rupal, great. Ab shubh prabhat aayi hai paigham kiski janib se aaj?
1: Good morning, East FM listener. I am coming with the latest news about artificial sun. India has joined the race of developing artificial sun in India. The project has started at Bangalore named Pragya. This artificial sun will generate a very high temperature, about 100 million degree centigrade, and this will be done with the nuclear fusion. The India is testing and will complete by 2030. It will give a very, very high amount of clean energy. Thank you.
0: Achha, artificial sun bana rahe hain. So, samne ek aur hoga, suraj jo ke insaan bana lega. Suraj ki garmi tawanai wo khud create karega. ML Vishwakarma, very good of you. Aur aapne apni awaaz mein jo bataya hai, acha laga. Aur quote of the day, father kaun hota hai? Faithful, available, teacher, hero, encourage, responsible. Bahut acche. Aur Sonal from Australia, aap ka bhi message mil gaya hai. Ab dekhte hain Manjula Vishwakarma ka India se.
2: Khud ko namaskar Parveen ji. आज बड़े अच्छे गाने से आपने शुरुआत की. अच्छा, आज का कोट, मुस्कुराने के बहाने जल्दी खोजो वरना जिंदगी रुलाने के मौके तलाश कर लेगी. शुभ प्रभात परवीन जी. एक तो आप ही इतने अच्छे अच्छे गाने लगाती हैं, ऊपर से हमारे लिसनर्स भी इतने अच्छे गानों की फरमाइश करते हैं. जैसे अभी बज रहा है दिल का भंवर करे पुकार, तो इतने अच्छे गाने सुनने को मिलते हैं, मुझे तो फरमाइश करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती. बस इकबाल भानु, शमशाद बेगम, गीता दत्त, इनको छोड़ के बस मैं इनकी फरमाइश करती हूँ.
0: बिल्कुल ठीक कहती हैं आप मंजुला. इकबाल बानो, ऑफ कोर्स उन वो आपके लिए ही होते हैं. जब भी मैं इकबाल बानो को का कोई सिलेक्ट करती हूँ. शबीर अहमद, क्या बात है शहजादे, व्हाट अ मेलोडियस सॉन्ग ऑफ मोहम्मद रफ़ी. ओके, वो आपको पसंद आए. चंद्रिका वासंत गोसाई कहती, देखो मुझे तो फरमाइश करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती. बहुत खूब
3: प्रवीण जी. तू मेरा चांद, मैं तेरी चांदनी, ये गाना फिल्म दिल लगी का है, जिसको श्याम और सुरैया ने गाया है, और जिसको शकील बदायूं ने लिखा है, और जिसकी धुन नौशाद ने बनाई है. ये ब्यूटीफुल गाना सुनाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया
0: प्यार अली भाटिया. अब समझो अगला गाना है मेरा फेवरेट है, और मुझे पता है आपका भी होगा, हर एक का होगा. पहले पहले मैं बहुत ज़्यादा सुनाया करती थी, आज फिर मैंने सोचा कि चंद हफ्तों के बाद एक बार फिर ये सुन लिया जाए.